0: ये मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्दरा।
1: नमस्ते।
2: बिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामा? अब पंडित का मतलब कोयल के बेली उपाग।
1: नहीं बेटा।
2: बेटा एंग मातर रान का। ये ला मास चमड़ ना। अब उन पोंगले ही पुड़ी रहे बूटे कलच पुराने का माँ।
0: वो कौन है?
2: यारे। अबरा। अबरे।
3: ए नलर नलर। ना मरे पुड़ी वरी की बूट उन्हें।
2: वेणु शास्त्री। वेणु शास्त्री।
0: अच्छा वेणु शास्त्री।
2: आमा आमा।
1: इस बच्ची का बर्थडे है। पंडित चाहिए। पूजा कराना है। पूजा
2: पूजा कराना है। चल रहे तिरुनागर से। तिरुनागर से उन्ने तेरी और हिंदी फैमिली वंदर के उन्ने देदो और मुख्यमान विषय बच्चन माँ वाह यम का मानी ये निकिर को लग
3: इन्ने
2: उन टे ये दो पैसन माँ
1: नमस्ते
0: नमस्ते
1: हम साउथ इंडिया टूर पर निकले हैं इस बच्ची का जन्मदिन है तो मंदिर से बोला पूजा करवा ले।
3: अच्छा आप हमारे टेंपल में आए हैं, बहुत खुश हुआ।
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं।
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं। अच्छा बेटी तेरी जन्मदिन है, क्या नाम तेरा?
1: मुस्कान।
3: मुस्कान बहुत प्यारी नाम है। अच्छा बेटी की नक्षत्र क्या है?
4: तारीस पूसम।
3: ओ पूसम, वेरी गुड स्टार, शी विल बिकम अ वेरी बिग हीरोइन। तू तो ऐश्वर्या राय बन जाएगी।
4: बेटा व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो शाचिनाथ टेंपल है।
4: हु इज द मेन गॉड?
3: लॉर्ड शिवा।
4: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा, चलिए पूजा करवा देंगे। ए वहां क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल। चलिए आप चलिए।
2: எல்லா முடியும் பேசுறா
3: यार। इवाला இவங்க வடநாட்டுல வந்திருக்காங்க। ये मंदिर का बड़ा पंडित है वेणु शास्त्री जी।
0: वेणु शास्त्री का?
3: हां जी।
1: ये लड़का कौन है?
3: ये हमारा मंदिर का बेल बॉय है।
1: बेल बॉय?
3: हां जी।
1: ये तो बैड बॉय है।
5: इन्हें पतिया वाले तो सुली रखा है।
3: आइए पूजा करेंगे।
2: बैड बॉय याना?
3: हां
2: बैड बॉय ಅಂತ போறாले அப்படினா என்ன?
5: அதாவது இந்த உலகத்திலேயே ஒண்ணா மாதிரி அயோக்கிய பய